0: समर्पण की एक दिव्य कहानी।
1: अच्छा कान्हा, क्यों जा रहे हो?
2: क्योंकि नियति मेरे बस में नहीं।
0: देखिए कृष्णा, राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा की अमर लीला।
2: वचन दिया था राधा को निभाना पड़ेगा।
0: कृष्णा अवतारम इन सिनेमाज नियर यू।
2: ये बंसी तुम्हारी राधा और मेरा नाम भी।
3: Like a radio.
4: Time for another.